0: टटोलती रहती हैं दरवाज़ों की कुंडियाँ, बच्चों की चादर, पति का मन। और जब जागती हैं सुबह तो पूरा नहीं जागती, नींद में ही भागती हैं। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। हवा की तरह घूमती, कभी घर में कभी बाहर, टिफ़िन में रोज़ नई रखती कविताएं, गमलों में रोज़ बो देती आशाएं, पुराने अजीब से गाने गुनगुनाती और चल देती फिर एक नए दिन के मुकाबिल, पहनकर फिर वही सीमाएं। खुद से दूर होकर भी सबके करीब होती हैं। औरतें सच में बेहद अजीब होती हैं। कभी कोई ख्वाब पूरा नहीं देखती, बीच में ही छोड़कर देखने लगती हैं चूल्हे पे चढ़ा दूध। कभी कोई काम पूरा नहीं करती, बीच में ही छोड़कर ढूंढने लगती हैं बच्चों के मोजे, पेंसिल, किताब, बचपन में खोई गुड़िया, जवानी में खोए पलाश, मायके में छूट गई स्टापू की गोटी, छिपन छिपाए के ठिकाने, और वो छोटी बहन छिपके कहीं रोती। सहेलियों से लिए दिए या चुकाए गए हिसाब, बच्चों के मोजे, पेंसिल, किताब, खोलती बंद करती खिड़कियाँ, क्या कर रही हो, सो गई क्या, और खाती रहती झिड़कियाँ। ना शौक से जीती हैं, ना ठीक से मरती हैं, कोई काम ढंग से नहीं करती हैं। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। कितनी बार देखी है मेकअप लगाए, चेहरे के नील छिपाए, वो कांस्टेबल लड़की, वो ब्यूटीशियन, वो भाभी, वो दीदी, चप्पल के टूटे स्ट्रैप को साड़ी के फॉल से छिपाती, वो अनुशासन प्रिय टीचर, और कभी दिख ही जाती है कॉरिडोर में जल्दी जल्दी चलती, नाखूनों से सूखा आटा झाड़ते। सुबह जल्दी में नहाई, अस्पताल में आई वो लेडी डॉक्टर, दिन अक्सर गुजरता है शहादत में, रात फिर से सलीब होती है। सच में औरतें बेहद अजीब होती हैं। सूखे मौसम में बारिशों को याद करके रोती हैं, उम्र भर हथेलियों में तितलियां संजोती हैं, और जब एक दिन बूंदे सचमुच बरस जाती हैं, हवाएं सचमुच गुनगुनाती हैं, फिजाएं सचमुच खिलखिलाती हैं, तो ये सूखे कपड़े, अचार, पापड़, बच्चों और सारी दुनिया को भीगने से बचाने को दौड़ जाती हैं। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। खुशी के एक आश्वासन पर पूरा पूरा जीवन काट देती हैं, अनगिनत खाइयों को अनगिनत पुलों से पाट देती हैं। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। ऐसा कोई करता है क्या, रस्मों के पहाड़ों, जंगलों में नदी की तरह बहती, कोपल की तरह फूटती, जिंदगी की आँख से दिन रात इस तरह, और कोई झड़ता है क्या, ऐसा कोई करता है क्या। सच में औरतें बेहद अजीब होती हैं।
1: मेरी आरजू कैद है मेरे मन के पिंजरे में, जैसे कोई पंछी जिसका नसीब ही उड़ना है, उसके नसीब में उड़ना नहीं। छूना चाहती हैं गगन की ऊंचाइयों को, मगर वो कैद है। मेरा मन झांक रहा झरोखे से, जैसे किसी अस्तबल में घोड़ा देख रहा खिड़की से, मिटते हुए उसके पैरों के निशान, और देख रहा हवा को फिर से पछाड़ने के लिए, मगर वो कैद है। मेरा मन बैठ किनारे देख रहा समुद्र को, जैसे छिछले पानी की कोई मछली, वास्तविकता ने तय कर रखे जिसके पानी के हिस्से, नापना चाहती है वो समुद्र की गहराई, मगर वो कैद है, मगर वो कैद है।
2: Hello friends, I am Lotungbeni from Department of Communication.
3: And I'm Wandangla from MA Competitive Literature.
2: The song we are going to sing now is Zai Zai Le from Lotanaga tribe. And then it means to strive and dwell for God.

I am a storyteller. I'm here to tell a story of storytelling, which means in Urdu, dastan goi. Dastan goi is an Urdu word which is comprises of two words, dastan and goi. Dastan means epic and goi means storytelling. Today, I'm going to narrate a dastan from Kabir Das. Kabir Das, a famous poet and writer, and the story goes like this. Ek gaon mein दो लड़कियां रहती थी, एक का नाम था सत्य और दूसरी का कहानी। दोनों बेहद खूबसूरत थी। सबको फक्र था कि सत्य और कहानी हमारे गांव में रहते हैं। दोनों सहेलियां थी, साथ खिलखिलाती थी, हंसती थी। एक बार की बात है, एक फकीर उनके घर में आया। फकीर ने उनसे बोला, बेटा थोड़ा सा खाना दे दो। उन दोनों ने बड़े ही प्यार से उसके लिए खाना पकाया। बाद में जाते वक्त उस फकीर ने उनको एक आईना दिया। आईने को देखते ही दूसरे को देख के इतराने लगे। सत्य को लगा वो बहुत खूबसूरत है और कहानी को लगा वो भी कुछ कम नहीं है। लेकिन इस खूबसूरती की लड़ाई में दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और इस मुकाबले का नतीजा ये निकला कि दोनों ने ये इरादा किया कि कल दोनों गाँव की जो एक ही सड़क है उस पे घूमने जाए अकेले अकेले और जितने लोग उनको देखेंगे उनसे पता लगाएंगे सत्य ज्यादा खूबसूरत या कहानी। सबसे पहले सत्य की बात, लगा कि वो तो मुकाबला

एक कर चली। उसके बाद कहानी की बारी आई। कहानी ने अपना सिंदूर लगाया, काजल से अपनी आंखें सुनवाई, अपनी चुन्नी लपेटी, लहंगा लहराया और बलखाती हुई वो गांव की सड़कों पे निकली। जैसे ही उसने गांव की सड़कों पे कदम रखा, लोग बाहर आने लगे, उससे बात करने लगे।

कहानी में सत्य के कंधे पे हाथ रखकर बोला कि बात दरअसल ये है कि लोगों को ना सच देखने की आदत नहीं है और नंगा सच तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुमको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो तुम्हें कहानी का हाथ तो थामना ही पड़ेगा, सच की खूबसूरती को कहानी में ढालना ही पड़ेगा। लोग इस बात पे बहस करना कि कबीर धोती पहनते थे या लुंगी पहनते थे बेईमानी है, क्योंकि सच तो सिर्फ नंगेपन में है।